0: तो हंसाए।
1: जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी तो रुलाए। एंड सो गोज ट्रू विथ मोस्ट ऑफ आवर लाइव्स। एंड वी आर सेलिब्रेटिंग सुमन कल्याणपुर जीज इमेंस कॉन्ट्रीब्यूशन, प्राइसलेस कॉन्ट्रीब्यूशन। शी पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 89। एंड द नेक्स्ट रिक्वेस्ट इज अ मराठी सॉन्ग बाय केदार जंबेकर। केदार, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस रिक्वेस्ट। Today the special show is even more special, dear, because we are getting to listen so many different types of songs, so many different genres, so many different languages, right?
2: Yep.
1: That's it. So, Kedar, here is your request. Enjoy, buddy.

0: मगर मेरे दिल ने मुझे धोखा दे दिया। फन सॉन्ग, फन सॉन्ग। सुमन कल्याणपुर एंड मोहम्मद रफी फ्रॉम द मूवी फर्ज, 1967 रिलीज। रूपा एंड अंकल, आई होप यू एंजॉयड दैट सॉन्ग। द नेक्स्ट रिक्वेस्ट इज बाय आवर वेरी ओन अनिंदो। अनिंदो, थैंक यू बड़ी, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल यू डू फॉर दिस रेडियो स्टेशन एंड फॉर भारतीय संगीत। एज यू नो, अनिंदो, मुरली कृष्णा जी एंड आई, वी एंड दिया, वी वॉलंटियर आवर टाइम एंड एफर्ट टू कीप दिस प्रोग्राम रनिंग फॉर मोर देन हाउ मेनी ईयर्स, 28+ ईयर्स, एंड
1: 29 एक्चुअली।
0: 29, करेक्ट। एंड द नेक्स्ट सॉन्ग, अनिंदो, हियर इज योर रिक्वेस्ट, एंड आई ऑल्सो डेडिकेट दिस सॉन्ग टू आवर फ्रेंड सलमान हाशमी। सलमान बड़ी, थैंक यू सो मच। आई जस्ट रिसेंटली केम टू नो दैट यू आर सच अ ह्यूज म्यूजिक फैन, एंड वी गॉट अ लिटल टेस्ट ऑफ इट यस्टरडे इवनिंग एक्चुअली। सो सलमान, थैंक यू बड़ी, थैंक यू। दिस वन इज डेडिकेटेड टू यू एंड योर फैमिली। थैंक यू सो मच फॉर योर एंथुजियाज्म, योर पैशन फॉर म्यूजिक, एंड ऑनिंदो, बोथ ऑफ अस, ऑल ऑफ अस, लेट्स एंजॉय।